0: respect.
1: Radio Libre en Périgord.
2: बोले एक बार बोलो गजानंद भगवान की जय। पर काल की रसोई कौन कहे?
3: तारे घर।
2: हां मैं जरूर आ जाऊंगा। बोले एक बार बोलो गजानंद भगवान की जय।